ए आज याती सलाह सोत अंदलींदे ए आज आज इन तहस खाएगी ए खुदा आज शेम पत्रा उची तोलिस निज़नार ग्रास कैंसो एफी मर्टीन